0: पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा

celu din atem, ja te udaviva. ज्ञानतर गुणतर कुरुरट जनपदवासी नुदिसा संबुदुरजानन वहन्से दिसा वदाल सत्य ज्ञानय निर्वाण मार्गय सतर सतिपट्ठानयाय दुख समुदय निरोध मार्गयन चतुर्विध आर्य सत्य मग साक्षात कुट दुखिन निथिरव बियन तोरव सदहम मग वडमु सतर सतिपट्ठानय श्रवणय करमु